हैं समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। और अब समाचार विस्तार से। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरुलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो न तो दोबारा चुनाव चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी। स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम एआईएडीएमके से बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर सिंह महतो भी मौजूद रहे। शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नव निर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह 10 होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी

0: एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
0: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIEC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नई 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन हमलों में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को भी गोली मारी गई। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारियों के निजी सहायक की हत्या की कड़ी निंदा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
3: वियतनाम के अध्यक्ष तो लांग का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लांग द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लांग मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लांग लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
4: We have a deep and trusted relationship.
5: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है, क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
4: In its developmental journey.
2: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है, हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है, जिसने जारी अमेरिका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं, जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
7: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. My becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to know that language, to know the habits, the rituals.
2: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: फरहत पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का एक वर्ष, जल थल नभ में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स, किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले करेगी प्रहार। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर का एक साल, अजय हिंदुस्तान के वो 88 घंटे जब हमारे प्रहार से घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕಾ? ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ cbsvlr@gmail.com.

0: o'clock. Follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay met Governor Vishwanath Arlekar for the second time at the Lok Bhavan today. It is said the governor had called him. The governor is also likely to depart for Kerala after the meeting with him. Yesterday as well, Vijay met the governor and presented the list of the party MLAs and also the support letter from the Congress. At this juncture, he needed more support to show a majority. VCK leader Thirumaravan has said his party would decide on supporting Vijay after the legislative party meeting today. His party has two MLAs. The left parties have also appealed to the governor to give the opportunity to form the government to the single largest party, TVK. It stated that the majority could be proved on the floor of the assembly. Amid political uncertainty following the government formation in Tamil Nadu, more than 40 AIADMK MLAs and senior party functionaries from various districts of Tamil Nadu have arrived at a private resort at Puthukuppam near Puducherry. In Kerala, discussions to decide a new chief minister are still continuing. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
1: Congress sources in Thiruvananthapuram informed that the decision regarding the new chief minister in Kerala will be taken by the national leadership. Even though the Congress Legislative Party meeting was held in Thiruvananthapuram today, no decision regarding the chief minister was taken. The observers of the All India Congress Committee are continuing one-to-one meeting with the newly elected Congress members. The observers are supposed to collect the opinions of all newly elected members and hand them over to the national leadership. According to the present situation, a decision on chief ministership is expected only by the weekend. Nidhi M. Pallurithi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: Puducherry Chief Minister N. Rangasamy today submitted his resignation to Lieutenant Governor K. Kailashnathan, paving the way for the formation of a new government in the Union Territory. More from our correspondent.
2: Following the completion of the assembly elections, the Lieutenant Governor yesterday issued orders for the dissolution of the 15th Puducherry Legislative Assembly. The National Democratic Alliance government led by Rangasamy is set to return to power after securing a comfortable majority in the elections. The Lieutenant Governor is expected to take a decision on government formation once the All India NL Congress, the single largest party and the principal constituent of the NDA Alliance in Puducherry, formally takes claim to form the government. Meanwhile, R. Selvam will continue as Speaker until the newly elected Assembly appoints a pro tem Speaker. In the newly elected House, the NDA secured 18 seats. The All India NL Congress won 12 seats, while the Bharatiya Janata Party secured 4 seats. Alliance partners, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam and Lakshya Janathaya Kachi, 1 seat each. Vibhinasnath, Akashvani News, Puducherry.
0: In West Bengal, political parties to form a new government have intensified. We have more in this report.
3: Speculation over who will become Bengal's new chief minister may finally end on Friday. The BJP has convened its first legislature party meeting at 4 p.m. that day at the Bishwa Bangla Convention Center in New Town. It is at this meeting that the leader of the BJP legislature party is likely to be formally elected. In other words, the high-profile meeting is expected to indicate who will wear the crown of Bengal's next chief minister. The political spotlight, however, is also on another key aspect. Union Home Minister Amit Shah himself will be present in Kolkata for the selection of the BJP legislative party leader. The BJP leadership is keen on ensuring unanimous choice of leader. At the same time, the party also wants to send out a strong message of unity among its MLAs ahead of government formation. That is why the meeting is being viewed as extremely significant in political circles. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
0: Meanwhile, in connection with the murder of a BJP MLA Shubhendu Adhikari's close aide, the state police have arrested three individuals. Police also formed a seven-member special investigation team, SIT. It will work under the supervision of the IG of CID. Its members will include officials from CID, SDF and the state police's intelligence branch. Last night, miscreants shot dead Shubhendu Adhikari's aide, Chandranath Rath. The Director General of Police visited the crime scene last night itself. Later, bullet casings were recovered and the investigation was launched immediately. Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia launched a nationwide annual health checkup initiative for workers aged 40 years and above under the new labour codes today. launching the initiative at the Employee State Insurance Corporation, ESIC, Medical College and Hospital in New Delhi today. The minister said respect for the country's workforce and youth power has increased significantly over the last 12 years under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He said the government has been making continuous efforts to create employment opportunities, and as a result, the unemployment rate has declined to around 3.2%.
4: Around 30 crore people were covered under social security schemes a decade ago, and the number has now risen to 94 crore. The coverage under ESIC has more than doubled over the decade, from 7 crore people to 15 crore. The government has focused not only on providing jobs, but also on ensuring social security for the middle class and economically weaker sections.
5: 4 crore logo ko social security ki coverage mil raha hai.
0: U.S. President Donald Trump has reportedly halted a planned naval operation to escort ships through the Strait of Hormuz after Saudi Arabia refused to allow American aircraft involved in the mission. Russia has warned of retaliatory strikes on Kiev if Ukraine attempts to disrupt Victory Day celebrations on the 9th of May, the Russian Defense Ministry said. Foreign diplomatic missions and international organizations have been advised to evacuate their staff and citizens from Kiev as a precaution. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will face Royal Challengers Bengaluru today at Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Khana Cricket Stadium, Lucknow. The match will start at 7:30 p.m. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, South Interior, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. The Met Department said thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are expected over Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh and Goa till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Madhya Maharashtra, Madhya Pradesh, Marathwada, Andaman and Nicobar Islands and northeastern states of the country tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi hails first anniversary of Operation Sindoor, reaffirms India's commitment to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary expands his cabinet. 32 ministers, including Nitish Kumar's son, take oath as new ministers. Hectic Pali is underway to form governments in Tamil Nadu and Kerala. Government launches nationwide annual health checkup initiative for workers aged 40 years and above. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to face Royal Challengers Bengaluru in Lucknow this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
6: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
7: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
6: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इसमें स्थानीय निवासी और महिला प्रतिभागी शामिल थीं। आज के ही दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
8: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
9: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए ना प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुना, ಭುಜಂಗಕ್ಷ್ವ ರಾಜ್ಯಂ ಸಮೃದ್ಧಂ ಮಯೇ ವೇತೆ ನಿಹತ ಪೂರ್ವಮೇವ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಭವ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿನ.
8: ಕಂಧೋ ಸೇ ಮಿಲ್ತೇ ಹೈ ಕಂಧೇ ಕದಮೋ ಸೇ ಕದಮ್ ಮಿಲ್ತೇ ಹೈ ಹಮ್ ಚಲ್ತೇ ಹೈ ಜಬ್ ಐಸೇ ತೋ ದಿಲ್ ದುಶ್ಮನ್ ಕೇ ಹಿಲ್ತೇ ಹೈ.
6: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसी के नेता थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
10: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरलम में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
6: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
11: बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे अकालों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
6: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे

0: कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्य विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
0: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बहुत प्यार करते हैं ना आप अपने वतन से, अपने देश से। हम यहां सरहद से कोसों दूर बैठे हैं और बात कर रहे हैं अपने अपने देश प्रेम की। तो सोचिए, सरहदों पर बैठने वाला हर वो सिपाही, हर वो अफसर जो मां सरहद की रक्षा कर रहा है, आसमान में जमीन पर वो चांद सितारे हमारे, वो धरती मां का मिट्टी का वो लेप, और उसी लेप के बीच में वो भावनाएं तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। संदेश टू सोल्जर्स एक ऐसा शो है जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हिंदुस्तान की फौज के उन सितारों से, सुसज्जित अफसरों से, उन फौजी भाइयों से जो अपना परिवार पीछे छोड़ के आपके परिवार को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद हैं, मेजर एस के यादव, जिन्होंने 15 साल की उम्र में एनडीए ज्वाइन की और उसके बाद 14 से ज्यादा साल उन तमाम जगहों पर भारत मां की रक्षा की सेवाएं दी अपनी। हमने कई जाबाज अफसरों और सिपाहियों के साथ आपकी मुलाकात कराई है, लेकिन आज हम टैंक रेजिमेंट की बात करेंगे। टैंक के अंदर की वो जिंदगी, टैंक का वो लोहा जो टक्कर लेता है दुश्मनों से, टैंक रेजिमेंट की तैयारी, उसका फौलाद आज हम सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: आइए मुलाकात करते हैं यहां मेजर एस के यादव के साथ। स्वागत कर रहा हूं सर, और पूरे हिंदुस्तान का ये नमस्कार, ये सलूट स्वीकार कीजिए।
1: शुक्रिया, थैंक यू।
0: कैसे हैं सर आप?
1: एब्सोल्युटली फाइन, फर्स्ट क्लास।
0: आज हमने आपको सिविलियन ड्रेस में बुलाया है, लेकिन जज्बा वही है जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो ताकत है, भारत माँ की वो ड्रेस आपकी।
1: बिल्कुल, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, एज दे से, यू नेवर लीव द आर्मी। एक बार आप आर्मी ज्वाइन कर लें तो एक फैमिली बन जाती है
0: जी,
1: और आप चाहे रिटायर हो जाएं, सर्व कर रहे हो, वो पूरी फैमिली एक जैसी होती है। टिल यू रीच योर लास्ट स्टेज, द होल फैमिली, योर रेजिमेंट इज विद यू इन गुड एंड बैड टाइम्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटिफुल इंडियन आर्मी।
0: आप तो टीनेज में ही इसके साथ जुड़ गए इंडियन आर्मी।
1: हाँ, मैं वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर्स था। फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए में चले जाएं आप हमारे टाइम पे, तो आप 15.5 साल की उम्र में आप एनडीए जाते हैं, आपकी दाढ़ी भी नहीं हुई होती, फर्स्ट टाइम शेव होता है वहां पे जाके। तो
0: रैगिंग हुई थी सर आप? उसके बारे में
1: याद है।
0: 15 साल की उम्र में सर फौज में चले गए आप, और रैगिंग तो हुई होगी।
1: 15 रैगिंग की वजह से मैं कहूंगा आई शुड बी थैंकफुल ऑन द हाइंड साइट, क्योंकि वो रैगिंग ने ही हमको वो स्ट्रेंथ, हमको वो ताकत दिया है जो हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया। वो एक फाउंडेशन बन जाती है और वो फिर फॉर लाइफ टाइम आपके साथ रहती है वो। और वो बॉन्डिंग जो होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, वो

0: और अभी भी हम लोग रिटायर हो चुके हैं. पीपल माय कोस्टमेट्स हैव बीन जनरल्स ब्रिगेडियर्स बट वी स्टिल रिमेन एंड टॉक लाइक एज इफ वी वर इन इंडिया.
1: आपने व्हाट्सएप का नाम लिया तो आज एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दूं कि हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है आप उसके साथ उसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070 9868107070. कोड वर्ड्स कुछ ऐसे होने चाहिए सर कि जल्दी समझ में आ जाए. आपको 15 साल की उम्र में किसने प्रेरित किया कि आप फौज में जाइए एनडीए में जाइए?
0: देखिए मेरे फादर एयरफोर्स में थे
1: जी
0: और हम लोग एक फौजी फैमिली कह लीजिए आपको. मेरी सिस्टर आर्मी में डॉक्टर थी. वो उन्होंने शादी भी एक आर्मी ऑफिसर से की जो कि एज ए आर्मी कमांडर जनरल रिटायर हुए हैं. और हमारे टाइम पे फौज के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था हमारी फैमिली में.
1: ओके, फौज में ही जाना है.
0: शुरू से ही एनडीए की तैयारी करनी है और यूनिफॉर्म पहननी है क्योंकि फादर को देखा था यूनिफॉर्म में. और कोई कुछ उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं.
1: मदर तैयार थी कि फौज में जाइए. इतने सारे फौजी घर में बोला नहीं उन्होंने ये बच्चा भी जाएगा वहाँ.
0: उनके हस्बैंड भी थे फौज में. उन्होंने फौज के बाहर फ्रेंकली कोई लाइफ ही नहीं देखी हमने. हमारा जो फौजी कंटोनमेंट्स होते हैं दे आर ऑल्सो ए क्लोज निट फैमिली. सारा सेल्फ सफिशियंट होते हैं वहाँ पे. फ्रॉम ऑफिसर्स मेस टू टेनिस कोर्ट स्विमिंग पूल्स योर मूवी थिएटर एवरीथिंग इज सेल्फ सफिशियंट. यू डोंट रियली हैव टू गो आउट इन स्मॉल लिटिल स्टेशंस टू द सिविलियन एरिया.
1: सो इज दैट एडवांटेज और यू थिंक यू मिस समथिंग अगर सिविलियन एरिया में नहीं जा रहे कुछ ऐसा?
0: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कंटोनमेंट्स और आर्मी स्टेशन आर इन द फील्ड एरियाज. सो फील्ड एरिया में तो यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट बिकॉज आपको कुछ मिलता नहीं है इतना जो आपको चाहिए. चाहे राशन हो चाहे जो एंटरटेनमेंट चाहिए वो तुम्हारे आसपास ही होनी चाहिए.
1: जी
0: मेट्रो सिटीज में दूसरी बात है.
1: ओके,
0: वी हैव ऑफ कोर्स अप्रोच टू मॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स एंड सो ऑन. कभी कभी आते हैं फील्ड में. अगर आप पोस्टिंग कर लें तो अगली पोस्टिंग मोस्ट प्रोबेबली टाउन में दे देते हैं उसको थोड़ा रेस्ट देने के लिए.
1: ओके, मुझे ये बताइए कि आपने अपने फादर के साथ, आपके फादर की तो पोस्टिंग होती रहती होगी, जब वो एयरफोर्स में थे तब आप ज़्यादा स्टेशन्स में गए अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग सिटी, लाइफस्टाइल अलग, भाषा अलग, खान पीन अलग, पढ़ाई भी अलग हो गई होगी.
0: यस, बिल्कुल सही बात है. ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी, बट आई टेक इट एज एन एडवांटेज बिकॉज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज दैट यू एक्चुअली कम टू सी सो मेनी प्लेसेज, ए न्यू प्लेस एवरी टू ईयर्स थ्री ईयर्स. एंड आई रियली लव दैट. एंड एक्चुअली वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग आई स्टिल लव टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ दैट परहैप्स इन यू नो थिंग विच आई हैव गॉन थ्रू. एंड आफ्टर ए वाइल मेरे फादर ने सोचा भाई बहुत घूमना हो गया बच्चों को तो मुझे हॉस्टल में डाल दिया ए फोर स्कूल में.
1: Okay.
0: सुब्रोटो पार्क दिल्ली में.
1: ओह,
0: बोर्डिंग स्कूल
1: टैप्स कहते थे उसे.
0: टैप्स, अब टैप्स हो गया.
1: आपको और मेरा एक कनेक्शन है.
0: पहले एसीएस होता था.
1: ओके,
0: सो उसमें बोर्डिंग स्कूल में डाला तो डिसिप्लिन और बढ़ जाता है. एनडीए की तैयारी हो गई. सो दैट इज हाउ द एकेडमिक्स वाज. लकीली आई वेंट थ्रू द एनडीए एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट
1: जी
0: एंड एनडीए चले गए.
1: और हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आप टैंक रेजिमेंट के साथ जुड़े. T-72 टैंक के बारे में हम बात करते हैं. अहमदनगर में आपका, आपकी पहली पोस्टिंग गुजरात में थी?
0: नहीं, पहली पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में होती है
1: जी
0: सबसे पहले. उसके बाद वहाँ 6 महीने बिता के हम लोग एक यंग ऑफिसर्स कोर्स करते हैं.
1: ओके,
0: जो हमारा टैंक्स का कोर्स अहमदनगर में होता है.
1: ओके,
0: तो वहाँ पे हमको एक्चुअली रियली टैंक के बारे में पूरा पता चलता है. उसकी ट्रेनिंग, फायरिंग, उसका डीएनएम जो होता है, ड्राइविंग, मेंटेनेंस, गनरी, उसकी रेडियो कैसे चलती है.
1: ओके,
0: और उस जमाने में जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे पास विजयंत होते थे.
1: या, विजयंत 55. या.
0: और उसके बाद देन T-55 से हम T-72 में ग्रेजुएट हुए
1: जी,
0: जिस पर मैं इंस्ट्रक्टर भी था. मैंने अहमदनगर में आई वॉज इंस्ट्रक्टर ऑन T-72 टैंक. एंड अब तो T-90s एंड अर्जुन आ गए हैं, उसके भी अपग्रेडेड
1: वर्जन्स है. सर, टैंक के बारे में मैं जानना चाहूँगा क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं दे वुड ऑल्सो वॉन्ट टू लिसन कि टैंक का पहला जब आप देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो फौलाद लगता है पूरा, है ना? सो यू वेंट देयर बाय चॉइस और
0: माय फर्स्ट चॉइस इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी वॉज द टैंक.

0: regiment.
1: Okay.
0: And I joined a regiment called the Deccan Horse.
1: Deccan Horse.
0: जो कि 1790 में raise हुई थी. Wow. As the private army of the Nizam of Hyderabad.
1: All right.
0: And then it went through various transformation and it became Royal Deccan Horse and then the Deccan Horse after 1947. And we had a Muslim squadron in before 1947.
1: Gotcha.
0: After partition, that squadron went into Pakistan in a regiment called Probins Horse.
1: Okay.
0: For quite some time, actually, strangely, we used to have a common newsletter also, I think, where Probins Horse sort of became a sister regiment.
1: Okay.
0: Though on the other side of the border.
1: Okay.
0: And we had one officer also till quite late going to London, UK to attend the British officers who used to host their fathers, or they themselves served in the Royal Deccan Horse or the Probins Horse. So,
1: sir,
0: quite a
1: Deccan Horse ke saath judne ke baad wo jazba kaisa aaya, kuch wo andar ki aapke andar ki bhavna, you want to share with us?
0: Yes, I was always a cavalry man. Hum black berets pehnte hain, काली टोपी
1: जी,
0: एंड हम लोग वन ऑफ द टू फाइटिंग आर्म्स हैं. एक इन्फेंट्री होती है, एक टैंक्स होते हैं. जो इन्फेंट्री होती है वो बेसिकली जब लड़ाई होती है तो अगर पहाड़ों में है तो इन्फेंट्री आगे होती है, टैंक्स नहीं जा सकते. लेकिन पंजाब या राजस्थान जो प्लेन्स में होता है तो सबसे पहले जब लड़ाई शुरू होती है टैंक्स आगे जाते हैं.
1: Okay.
0: वो लीड करते हैं.
1: Okay.
0: दे ऑक्यूपाई ए पीस ऑफ लैंड एंड देन द इन्फेंट्री गोज एंड ऑक्यूपाइज इट.
1: जी,
0: ये अब हमारा हुआ. यू गो फॉर योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. सो दैट इज व्हाट द टैंक्स डू. इट्स अ टफ लाइफ. गर्मी होती है, अंदर बैठने की बहुत कम जगह होती है.
1: हाँ, वो थोड़ा हम जानना चाह रहे थे कितनी जगह होगी सर लगभग.
0: आपने पता नहीं वो अभी मूवी आई थी 21 करके जो पूना हाउस की, अरुण खेतरपाल पर, तो उसमें टैंक कमांडर की एक ही सीट होती है, ये ऊपर का पोला होता है, उसमें बैठ के ही जाना है, वहीं सोना है, अपने सब कुछ वहीं करना है.
1: ओके.
0: एक स्ट्रेंज बात मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ कि विजंत टैंक में बहुत जगह होती थी.
1: तो अच्छा.
0: हम लोग जो जवान, जब ड्राइवर एक्सरसाइज कर रहा होता तो आपने रेस्ट करना है, आप नीचे स्लीपिंग बैग लगा के सो भी सकते थे.
1: अच्छा.
0: लेकिन जो रशियन टैंक है वो बड़ा कॉम्पैक्ट होता है.
1: Which is T-92?
0: T-72, T-55, T-54. Okay. होते थे उसके. Okay. पहले, अब T-90s. It's a compact tank. उसमें एक गनर होता है, एक कमांडर होता है, एक ड्राइवर होता है.
1: उसके पीछे भी कोई वजह कि आप अंदर उतना स्पेस नहीं दे रहे?
0: नहीं, उसमें बिकॉज स्पेस इसलिए नहीं है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर गैजेट्स इन दैट. बहुत सारे गैजेट्स हैं, यू नो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है. यू नो, गनरी के गैजेट्स हैं, रेडियो के गैजेट्स हैं, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस के गैजेट्स हैं. So you don't want to waste any time. There's a lot of ammunition space that is kept to load and reload the barrel.
1: Right. So aaj ke tanks bhi digitized ho gaye hain?
0: Sort of. Digitized to computer to nahi hai andar. As far as I know now.
1: Dekhiye, but civilian hu, civilian wale sawal puchunga.
0: हाँ जी.
1: क्या पता आपके पास एक GPS है, आपको अपनी location, अपना route आप देख रहे हो. You never know.
0: Yes.
1: अंदर आपके पास जो communication technology है वो शायद बदल गई हो. It's more towards कुछ ऐसा जानना चाह रहा
0: था. के पास पहले एक navigation system होता था, क्वाड्रात.
1: Okay.
0: वो बड़ा complicated सा system था, खाली commanding officers के tank में लगा होता था.
1: जी.
0: लेकिन अब तो you know GPS है तुम्हारे पास. In fact, I think actual war, tanks की war really speaking हुई नहीं है.
1: Okay.
0: लेकिन नेविगेशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम नाउ, एज यू नो, यू हैव इवन गूगल मैप्स.
1: वही मैं जानना चाह रहा था आपसे कि पर आप सोचिए, एक अगर मैं सिविलियंस के लिए थोड़ा समझना चाहूँ, सोचिए हमारे टैंक्स हैं, एक एक समय में अगर 10 टैंक्स अटैक के लिए जा रहे हैं, आपने प्लान है, आपका जो मिशन है वो सब कैलकुलेटेड है.
0: करेक्ट.
1: पर किसी वजह से आपको थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ा, चार टैंक्स इधर गए या उधर गए, या आप ऐसे माहौल में फंस गए जहां आपके यू नो व्हाट यू प्लान्ड कुड नॉट हैपन, नाउ यू हैव टू फेस. सो हु गाइड्स द रूट, वहां आप कैसे वो गाइडेंस लेते हैं?
0: सी, देखिए ऐसा होता है, पहले तो ये सारी डिस्कशन सैंड मॉडल पे हो जाती है.
1: ओके.
0: कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना. देर इज हमें मैप्स, हमारे जमाने के टाइम में मैप्स होते थे, ग्रिड मैप्स, और उस पर हम लोकेशन कर देते अपने ऑब्जेक्टिव्स और कैलकुलेट कर लेते थे कितना टाइम है, किस स्पीड पे, कितने टाइम लगेगा वहां पहुंचने के लिए.
1: जी.
0: फिर हमारे ईच रेजिमेंट में एक 3 स्क्वाड्रन्स होते हैं.

0: हर स्क्वाड्रन में ट्रुप्स होते हैं, तीन ट्रुप्स.
1: ओके.
0: हर ट्रुप में तीन टैंक होते हैं. तो यू नो, सो बेसिकली यू हैव ए स्क्वाड्रन कमांडर, ए ट्रुप लीडर्स जो सबसे जूनियर होते हैं, देन यू हैव ए स्क्वाड्रन कमांडर एंड देन यू हैव द रेजिमेंटल सीओ. दे ऑल आर ऑन अ रेडियो नेट टुगेदर.
1: ओके.
0: सो जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं वो आपको इंट्रा नेट पे सारी इंस्ट्रक्शन सेम मिल रही है. अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट जाइए, चार्ली स्क्वाड्रन आप राइट जाइए, ब्रावो स्क्वाड्रन होल्ड करिए यहाँ पे, होल्ड फायर, ये सारी होती है. जो सीओ होता है वो एक दूसरे नेट पे होता है जो उसके बॉस के साथ होता है, ब्रिगेड कमांडर या जीओसी के साथ. उसको वहां से इंस्ट्रक्शन आ रही है, वो इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिलती है.
1: ओके.
0: हम लोग अपने रेजिमेंटल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं जो सीओ ऑर्डर करता है कि ठीक है राइट फ्लैंक से फायर, आप राइट फ्लैंक पकड़िए, अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट.
1: स्पोर्ट्स वाली लैंग्वेज आ रही है, राइट फ्लैंक लेफ्ट फ्लैंक, फुटबॉल वाली.
0: इनफैक्ट दैट इज द लैंग्वेज यूज्ड आल्सो इन द आर्मी.
1: अच्छा.
0: देयर फ्लैंक्स आर देयर. देखिए बेसिक वॉर का टेक्निक होता है कि अगर एनिमी फायर कर रहा है तो आपको एनिमी का हेड डाउन कर रखना है.
1: ओके.
0: क्योंकि अगर आपने अटैक करना है उसके पहले एनिमी को बोलना है भाई यू मेक हिम बिजी एल्सवेयर, यू टेल योर आर्टिलरी कि वो गोले बरसाए उनके ऊपर, वो ट्रेंचेस में है जहां पर भी है या टैंक्स में, और यू टेल योर एयर फोर्स टू पर्टिकुलर टैंक सेक्शन.
1: ओके.
0: सो दैट द एनिमी इज बॉग डाउन एंड इट इज बिजी बिकॉज इट्स डाउन बिकॉज इट इज बीइंग बम्बार्डेड फ्रॉम ऑल ओवर एंड दैट इज द टाइम यू हैव योर ऑलरेडी सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस टू गो फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट और फ्रॉम द रेयर एंड अटैक द एनिमी. You don't want to face an enemy which is up and about and free to fire at you.
1: शायद यही guns जो हैं कारगिल में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था.
0: हाँ.
1: उसके बारे में बात करेंगे सर. yes. क्योंकि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का मन कर रहा है. आप लोगों की तरफ से ये गीत हमारे सिविलियन भाइयों के लिए.

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली और हमारे साथ आज के जो मेहमान है संदेश टू सोल्जर्स में वो है मेजर एस के यादव। आपका निकनेम मिकी है,
1: करेक्ट,
0: एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट?
1: क्लास टू में मेरी स्कूल टीचर ने मेरा नाम रख दिया था मिकी माउस और दैट नेम स्टक। आमटपोर में अगर आप किसी को बोलोगे डू यू नो मेजर स्वदेश कुमार यादव, दे विल लुक ए ब्लैंक, बट इफ यू टेल देम यू डू नो मेजर मिकी यादव, दे विल ऑल नो।
0: ओह वंडरफुल, रियल मेट्स आप लोग रहते हैं फौज में, है ना सर?
1: एब्सोल्युटली।
0: हम लोग टैंक्स के बारे में बात कर रहे थे, टैंक की लाइफ। आपने कहा कि अंदर की लाइफ लगता है कि टैंक जा रहा है, टैंक ने फायर किया, ये हुआ हुआ, लेकिन अंदर की लाइफ उतनी आसान नहीं होती, आप बिजी रहते हैं, है ना?
1: 55 डिग्रीज तक हीट में, समर्स में टेम्परेचर जाता है, उसके अंदर रहना पड़ता है। और एक्चुअल वॉर सिनेरियो में तो आपका कपोला ऊपर से बंद है, अगर सीन है, एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग थ्रू ए सॉर्ट ऑफ ए पेरिस्कोप, उसमें से आप देख रहे हैं एनिमी को। सो इट्स ए वेरी टफ सॉर्ट ऑफ ऑपरेशनल लाइफ इन द टैंक, इनसाइड द टैंक।
0: ऑलराइट, हम जब 26 जनवरी की परेड में देखते हैं कि टैंक्स आ रहे हैं, अंडर हैं, वो सल्यूट ले रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी से, लेकिन टैंक चलाने वाले कोई और हैं, तो वो उसी पर
1: तब मैं
0: जी,
1: तो मैंने रिपब्लिक डे परेड पे आई गेव द सल्यूट टू द प्रेसिडेंट।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली एक गनर होता है और जब सल्यूटिंग डाइस पे जाते हैं तो गनर

0: को इशारा मिल जाता है कब उसने गन को राइट टर्न करना है
1: जी.
0: और डिप करना है, विच इज द सैल्यूट, रेस करना है, सामने जाना है और कैरी ऑन करना है. तो दैट इज द ऑर्डर, दैट इज ऑल द गनर्स टेक्निक. द कमांडर हैज टू ओनली सैल्यूट विद हिज हैंड.
1: सब बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, गूज़बम्स आते हैं. क्योंकि 26 जनवरी की परेड पर मैं भी जो आंखों देखा हाल है वो हम लोग कमेंट्री कर चुके हैं वहां पे. बट जब आप लोग टैंक्स लेके वहां जाते हैं ना, हम लोग को बड़ा विद फील करते हैं.
0: हाँ,
1: कि हिंद की सेना जा रही है ये.
0: हाँ, टैंक एक सिंबल बन गया है, सॉर्ट ऑफ आर्मर्ड आर्मी का जो आर्मर्ड विंग है उसका जो तोपखाना कह दीजिए
1: जी.
0: तो इट इज बिकम अ सॉर्ट ऑफ, यस इट इज डिवेस्टेटिंग एंड इट इज, आई हैड ए गुड टाइम इन माय टैंक रेजिमेंट बिकॉज फील्ड फायरिंग होती है हमारी, प्रैक्टिसेस होती है रेंजेस पे, उसमें तो काफी कुछ ट्रेनिंग होती है उस पे. दैट इज हाउ यू सॉर्ट ऑफ टैंक वॉरफेयर इज ऑपरेटेड.
1: और वो जो आपकी ट्रेनिंग है दैट इज a tough training. It is not like chalo yaar aao practice karte hain. No, it's like that's the real war situation.
0: Real life scenario war situations create hoti hain
1: ji
0: Rajasthan deserts mein. Aur wahan ja kar hum log practice karte
1: hain. Okay. सर मैंने कुछ मैसेजेस मंगाए हैं कुछ बहुत देश प्रेम के साथ. बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं वो मैसेज भेज रहे हैं. आप विश्वास नहीं करेंगे कि अहमदनगर से एक मैसेज आया है और वो कह रहा है मेरा नाम गजानन शिंदे, गांव करजत जिला, और उसका नाम अभी अहिल्या नगर कर दिया गया है. सर ने अभी अहमदनगर की बात की तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ. आप शायद इनको तो गजानन शिंदे जी को नोन टू यू
0: नॉट नोन टू मी बट यस देर आर लॉट ऑफ शिंदे इन दैट रीजन. एंड अहमदनगर का जो आमट को स्कूल सेंटर एंड स्कूल है
1: जी,
0: वो एक सेंट्रल पॉइंट है. मेनली उसी की वजह से वो टाउन ग्रो किया एक तरह से.
1: ओके.
0: जो सारी ट्रेनिंग जो हमारी होती है, चाहे रेडियो की, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस की, गनरी की ट्रेनिंग, टैक्टिकल ट्रेनिंग, वो सारी जो बेसिक्स होती है वहीं पे हम लोग सीखते हैं.
1: एंड एवरीवन नोज अबाउट इट, देयर इज नो सीक्रेट इन इट. क्योंकि आप एयर पे बोल रहे हैं तो मैं अगर अहमदनगर के लोकेशन भी बता दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं.
0: इट्स अ पीस स्टेशन एंड इट इज बेसिकली ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग. हम लोग जाते हैं
1: शिरडी के पास जो अहमदनगर है, आप उसकी बात कर रहे हैं. ऑलराइट. आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे वहां. सर वो जो आप फायर करते हैं जब टैंक से, उसकी एक्यूरेसी पे तो बहुत काम करते होंगे आप लोग.
0: हाँ, तो उसी के लिए हम फील्ड फायरिंग ट्रेनिंग करते हैं
1: जी.
0: तो कि हमारे रेंजेस हैं वेरियस प्लेसेस पे, बबीना में है, झांसी के पास, तो वहां पर जाके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, गनरी देखते हैं पूरी. एंड उसमें एक चीज होती है, आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि जब मैं यंग ऑफिसर था तो एक एम ऑफ होता है. मैं एक एक्सरसाइज में था कॉल्ड ब्रास टैक्स.
1: ओके.
0: जो ऑपरेशनल था, ऑलमोस्ट वी हैड गॉन अक्रॉस
1: जी.
0: एंड आई वाज कमांडिंग ए स्क्वाड्रन.
1: ओह.
0: एंड वहां पे हम लोग चाय पी रहे थे सुबह सुबह. रात को हमें ट्रेवल, हम खाली रात को अपने कैमोफ्लाज नेट निकाल कर रात को घूमते थे.
1: okay.
0: और अपनी लोकेशन चेंज करते थे एवरी नाइट. क्योंकि हम लोग स्पॉटेड हो जाते थे और डे टाइम में अपने कैमोफ्लाज नेट लगा के चुप के बैठते थे.
1: okay.
0: तो डे टाइम में हम सोते थे, रात को जगते थे.
1: ये कौन सी लोकेशन थी सर, अभी बताना ठीक है?
0: समवेयर इन द डेजर्ट बॉर्डर, उसके जैसलमेर के आगे आसपास.
1: ओके.
0: बॉर्डर के टाइम
1: जी.
0: तो वहाँ पे मुझे याद है सुंदर जी आर्मी चीफ थे और मैं चाय वगैरह, चाय नहीं पी रहा था, सॉरी 11 बज गए थे, 10-11 बज गए थे. सो
1: मत बताइए क्या पी रहे थे रात के 10-11 बजे.
0: दो तीन हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूम रहे थे. तो उस जमाने में ये जहरीलेशन की जो आप बात करें इतना नहीं था. जो पायलट्स होते थे वो अपने थाइस पर एक मैप रखते थे और उसको
1: आजकल भी रखते हैं.
0: हाँ, रखते हैं. वो
1: हम लोग रखते हैं.
0: डेजर्ट में बड़ी मुश्किल होती है, कई बार खो जाते थे कि भाई कहाँ जाना है. तो हम लोग अपनी टोपी शोपी लाते थे, वो नीचे आ जाते थे, निकलते थे. एनडीए का ही निकला कोई कोस्ट हेलीकॉप्टर. तो एक हेलीकॉप्टर नीचे निकला, उसमें से निकले सुंदर जी एंड एक थे जो हमारे तब के अरुण सिंह जी, राज्य रक्षा मंत्री.
1: ओके.
0: तो वो आ गए और सुंदर जी मुझे पहचान गए क्योंकि मैं एडीसी था आर्मी चीफ का. तो उसने बोला मिकी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर मैं आई एम कमांडिंग स्क्वाड्रन हियर. तो उन्होंने बोला आप इनको अरुण सिंह जी को ना टैंक के बारे में बताइए. तो मैं इंस्ट्रक्टर था तो मैं टैंक पे उनको ले गया ऊपर. बट आई वॉज सरप्राइज दैट ही हैड सो मच नॉलेज अबाउट दैट टैंक.

0: अभी आपने एमिंग की बात की तो उन्होंने मेरे से एक चीज पूछा कि आप अगर एम ले रहे हैं एनिमी के टैंक के ऊपर तो आप सीधा फायर करते हैं के थोड़ा, तो मैंने कहा नहीं सर, उनको मालूम था एक चीज होती है एम ऑफ,
1: ओके,
0: अगर यहाँ से आप फायर कर रहे हैं 1 किलोमीटर दूर
1: जी,
0: तो आप सीधा फायर करेंगे तब तक टैंक निकल जाएगा, तो आपको एक एम ऑफ लेना पड़ता है,
1: गॉट इट,
0: कि पॉइंट पे लाना है और कैलकुलेट करना है कि वो टैंक उसी पॉइंट पे यूं ऐसे तभी आएगा,
1: मूविंग व्हीकल पे आपको कैसे स्ट्राइक करना है, या ओके,
0: सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड वेरी टेक्निकल एंड आई वुड कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम आरआरएम, आई मीन ही हैड लॉट ऑफ नॉलेज.
1: और कोई कॉम्बैट कभी मौका मिला?
0: हाँ, मुझे वैली शैली में नॉर्थ ईस्ट में मौका मिला है. एक्चुअल लड़ाई तो 71 वॉर की देखी नहीं, हम तो बच्चे थे
1: जी.
0: कारगिल वॉर तक मैंने फौज छोड़ दी थी, शायद नॉट लेफ्ट एंड टेकन पार्ट, बट देन टैंक्स का इतना रोल नहीं था वहाँ पर.
1: पर पहाड़ों में हम लोग जब बात कर रहे थे कि जिस तरीके से शेलिंग हम लोग करते थे, आप अभी हमें टैंक्स के जवाब बता रहे थे कि किस तरीके से आप आपका जो दुश्मन है उसका हेड डाउन करने पर मजबूर करते हैं. कैन वी कम बैक टू दैट?
0: यस. सो what happens is that let me tell you about kargil also. kargil mein bhi jo ladai hui hai upar jo chade hain jo supporting jo fires diye hain wo artillery guns ne diye hain, wo soften karte hain target ko. soften matlab ki jo bunkers hain upar unke upar dhada dhad bahut heavy firing hoti hai, aur that is the only way where jo infantry hai usko ek vertical climb karni hai.
1: okay,
0: तो ऊपर से तो वो शूट डाउन हो जाएंगे, तो उनका सिर नीचे रखना है, उनका ध्यान निकालना, उनको इतनी हैवी बम्बार्डमेंट करनी है कि वो खड़े होकर शूट भी ना कर पाए और हमारी फौज वहां तक पहुंच जाए.
1: okay.
0: तो दैट इज एन अटेम्प्ट. उसमें मरते हैं और कुछ जांबाज जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं वहां जाके और फिर हैंड टू हैंड फाइट होती है,
1: जो कि हुआ, मतलब हमने देखा वहां.
0: बिल्कुल हुआ.
1: हमारे पीवीसी जो हैं परमवीर चक्र से विजेता हमारे शो में भी आ चुके हैं.
0: यस यस, एब्सोल्युटली,
1: संजय कुमार.
0: और यही चीज जब पंजाब साइड या प्लेन्स में होती है वहाँ टैंक्स का रोल,
1: वहाँ टैंक्स का रोल,
0: क्योंकि वहाँ पे कोई चढ़ाई नहीं करनी है, वहाँ पे बैटल फील्ड आ रही है, टैंक कॉलम्स आ रहे हैं, आरटी आ रही है, आपने टेक ओवर करना है, तो टैंक्स लीड करते हैं वहाँ पे.
1: okay.
0: और आजकल तो बीएमपी आ गई है जिसमें, और टैंक्स पर भी इन्फेंट्री को हम अपने पीछे कैरी करते हैं.
1: right.
0: तो हम आगे तक जाते हैं और टैंक्स एक्चुअली गो एंड अटैक, टेक ओवर द प्लेस and carry on for the next objective. Infantry जो पीछे आ रही होती है BMP में, वो उतरती है और physically वहाँ पहुँच जाती है point पे, अपने trenches dig करती है और वो बैठ जाती है, ये हमारा हो गया area.
1: But sir, आज के time में just a layman question, tank जहाँ पे हम missile की बात कर रहे हैं, drone attacks की बात कर रहे हैं, तो tank के लिए it's more difficult the regiment, or it's like they have their own ways to handle such attacks?
0: You see, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है
1: जी,
0: this was a totally different operation. इसमें for the first time we did not really cross the border, and we had remote controlled drones, we set off missiles without crossing the border, the aircraft shot their targets without really crossing the border. It was a totally different game, and I owe a lot to the Indian artillery, because artillery ka role bada heavy tha idhar. They have these long range guns, they had their own targets and they were doing it. Mauka nahi mila operation sindur mein, shayad agar war 2-4 din aur chalti to armored aur infantry bhi andar jaake fir karna padta to wo dusri baat thi, lekin wo hua nahi.
1: Okay. Right sir, ek hamare listener hain and he is from Tamil Nadu, Sri Rangam Rajesh, Sri Rangam Tiruchirappalli, Tamil Nadu se likh rahe hain message, and aapko good evening kehte ho, keh rahe hain ki bonded major SK Yadav sir, Mickey Yadav sir, greetings to your bonded the company here, and of course hum yahan par unka jo message pad rahe hain, keh rahe Maratha, greetings to your bonded WhatsApp too and your MH16 MR bonded regiment too and bonded cavalry cavalier Yadav sir too. I don't know what he means by that, but something he's written typical of Maharashtra is vanakkam, And that is something very sweet.
0: Yes.
1: Somebody
0: yes,
1: known
0: yes.
1: to you?
0: Yes. No, not known to me.
1: Okay.
0: But, you know, Vanakkam, I think, is not a Maharashtrian word. Perhaps a Tamil word.
1: Tamil Nadu se likh rahe
0: hain. But he has the spirit.
1: Sara kiya. Jai Hind, Jai Maharashtra, yeah, Jai Tamil Nadu, Jai Bharat. And that's the spirit that we live with. Na,
0: cavalry sir? Regiment ko, officers ko kai baar cavalier bol jate hain.
1: Okay.
0: So that is what he's meant.
1: ओके सूरज जी हमें दिल्ली से कह रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं 20 वर्ष का हूं और सिविलियन हूं बहुत डिसिप्लिन रहना चाहता हूं कभी कभी मुश्किल होता है लेकिन आप लोगों की बातें सुन के प्रोत्साहन मिलता है और साथ ही साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सर आपने ऑपरेशन सिंदूर की जब बात की तो मैं फिर से जानना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा इफ इट्स अलाउड टू डिस्क्लोज हमारी टैंक रेजिमेंट एक्टिव तो थी पर कितना मतलब बहुत चौकन्नी भी थी एंड इट्स लाइक
0: No, no. In entire Operation Sindoor, mein, all our fighting arms, whether the tanks, infantry, they were in operational stage. Chutti leave was all cancelled. One did not know which way the war would go.
1: Okay.
0: And initial war, jo shuru hua hai, that was all, as I said, an air force war, an artillery war.
1: Yeah.
0: The tanks and the infantry was not used, but they were operationally ready. To go in should the orders come and they were absolutely ready to
1: okay main seedhe tough questions poochta hu sir aapse kyunki aap tank regiment aap uska ang reh chuke hain you headed your own group has it become more difficult now to step into the enemy zone is modern era mein
0: you see dekhiye aisi baat hai ki technology jiske paas hai I would say he is has an upper hand
1: superior of
0: yes
1: okay
0: so apparently the Chinese did give them a lot of technology due to which there were some early they tried to do something here and there Turkey intervened gave them the drones and stuff like that
1: Ji.
0: But we are dekhiye technically and otherwise Pakistan is no match to the Indian army at all and I'm saying this on air There's no match at all. In a live war, in a conventional war today, they would not last more than 72 hours at the most. Not at all. There's no match at all.
1: Sir, हमें news on AIR के माध्यम से हमारी सरहदों के पार Fiji Island से लेकर Brazil, Canada, Europe, African continent, Asian continent में सुना जा रहा है. That's a bold comment. A statement that you've given.
0: I meant every word of it and knowing the Indian Army, the capabilities, yes, it has not been tested fully in Operational Sindoor, but should it be repeated ever, I think it will come to light what the Indian Army means about.
1: ऑपरेशन सिंदूर हुआ अफसोस की बात है ना सर और एक तरीके से हम एनिवर्सरी मना रहे हैं थोड़ा दुख है कि पहलगाम में वो चीज़ हुई और उसके बाद भारत ने जवाब दिया दुख है कि हमारे को सिविलियन लाइव्स खोनी पड़ी उसका तो दुख है एक छोटी सी अगर आप परमिशन दे तो एक छोटी सी झलकी ऑपरेशन सिंदूर की लेते हैं और इस छोटे से किस्से में सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपका जो जज्बा मैं देख रहा हूँ सर आपकी आंखों में आह लाजवाब है सर इसे सुनते हैं सर
2: मेरे पति को बचा लो
3: हम बचा देगा कोई बात नहीं भाई तो क्या हुआ इसको क्या हुआ
2: प्लीज प्लीज प्लीज आस्क फॉर हेल्प वी डोंट नीड
3: ओके डोंट वरी यू ओके यू नीड अ वाटर सर अपने आप बोले ना मुझे
2: यहां पर थी क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी
3: यहां पे
2: उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है उसने उसको गोली मार दी
4: The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect.
5: I say to the whole world, identify, track, and punish every terrorist and their backer.
6: Operation Sindoor, 22 April को पहलगाम में हुए. विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था
4: इट वॉज डीम्ड एसेंशियल दैट द परपेट्रेटर्स एंड प्लानर्स ऑफ द 22nd अप्रैल अटैक बी ब्रॉट टू जस्टिस
7: नाइन टेररिस्ट कैंप्स वर टारगेटेड एंड सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड
8: दीज लोकेशंस आर लाहौर गुजरांवाला चकवाल रावलपिंडी अटक बहावलपुर म्यानो Chor and near Karachi.
9: To target civilian population, it's extremely unfortunate.
10: Just to point out...
11: We're not going to get involved in the middle of war. That's fundamentally none of our business.
10: That terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan.

0: You were happy with the how the forces responded. I mean, I know it's a funny question, but आपके कुछ सुनना चाह रहे हैं ना आपसे, इसीलिए ऐसा सवाल पूछा. Were you also willing to go कि यार मुझे बुला लो, मैं भी आता हूँ.
1: There and serving at that time because बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया ने. और उनके जो मारे हैं हमने एयरफील्ड्स पे, ऑलमोस्ट knocking on the door of their nuclear capabilities, it's a big thing. It was a big signal given to them.
0: And that technology, you are saying ki yahi superiority aap bata rahe hain.
1: Yes, okay. The Air Force has that. I mean, it was pinpoint sort of, you know, absolutely, they were knocking on the door of their nuclear storage facility, which is a big thing.
0: Okay. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारा डिफेंस भी अच्छा होना बहुत जरूरी है ना. वी डिफेंडेड वेल ऑल्सो. ऐसा तो नहीं है कि वहां से अटैक नहीं है. अटैक्स तो बहुत आए लेकिन सारे विफल किए हमने.
1: एब्सोल्युटली, उनके बेसिकली ड्रोन अटैक्स थे. अटैक तो क्या आया था उनका, मतलब एक आध कोई मिसाइल उन्होंने दिल्ली की तरफ भी डाला था, जो कि मेरे ख्याल से मिडवे पंजाब में कहीं ऑलरेडी शूट डाउन कर दिया गया था
0: जी. दैट वाज द नियरेस्ट. बट हाउ डू यू नो कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा था सर? हमारी टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल फायर होता है उसका रूट पता लग जाता है.
1: जब एनालाइज करते हैं जो मिसाइल को, तो उसकी रेंज देख लेते हैं ना. अगर लाहौर से उस एरिया से जहाँ से अगर लॉन्च किया है, अगर it's a city which is being targeted. So it was downed. It was absolutely shot down. So that's a big thing. And I think that was the only real thing which was threatening to the city. And I was very surprised that they started saying that Delhi has been bombarded and Delhi is gone and Delhi is finished all.
0: You heard that?
1: Yeah, I mean they were saying अभी दिल्ली पे bombarded हो गई है, ये bombardment हो गई है. I mean all false fake news.
0: और हमारे traffic jam में फंसेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि how difficult it is to go out from here.
1: Yes.
0: Anyway sir, ये तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की और ये चर्चा हम जारी रखेंगे.

0: आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और बहुत ही खास हमारे साथ यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं आज के, और वो हैं मेजर एस के यादव। और बहुत सारे लोग आपको, आपके जो कॉलीग्स हैं, वो आपको मेजर मिकी यादव भी कहते हैं। ओके, आप लोग का एक सॉलिड ग्रुप है, आपने कहा कि वी आर स्टिल बॉन्डेड टुगेदर। व्हाट्सएप का आपने कहा था कि ग्रुप है, तो इन ऑल कितने लोग होंगे उसमें?
1: एनडीए का ग्रुप है, हम लोग करीब 350 लोग थे जो पास आउट हुए थे एनडीए से। देखिए, एनडीए का ग्रुप अलग है, आईएमए का ग्रुप अलग होता है, जो एनडीए के थ्रू नहीं गए लेकिन डायरेक्ट एंट्री होते हैं। तो दो ग्रुप्स हैं।
0: ओके,
1: तो एनडीए को हम बॉन्डेड बोलते हैं, बॉन्डेड ग्रुप है।
0: तो वो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तब आप लोग कैसी बातें कर रहे थे?
1: और डिस्कशन होती थी और डिबेट्स भी, क्योंकि इसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हम तीनों थे कोस्ट गार्ड। तो एयरफोर्स वाला अपना एक्सपर्ट बताता था, आर्मी वाला अपना, और नेवी वाला, वो जो देवर नेवी वाज ऑपरेशनली रेडी एक्चुअली फॉर द ब्लॉकेड।
0: मेरा अगला यही सवाल था कि सर आपको तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मिल रही होगी।
1: हाँ, ऑन द ग्रुप वॉट एवर दे आर ऑल्सो दे यूज टू प्रेडिक्ट, दे टू से वॉट शुड बी डन, वॉट वॉज नॉट डन राइटली, वॉट वॉज डन राइटली, एंड वी यूज टू डिबेट ऑल दैट।
0: एंड ऑफकोर्स एक जज्बा बॉलीवुड भी तो लेकर आता है ना आप लोगों के लिए। आई एम श्योर आप गीत सुनते हैं कभी, गीत सुन के भी एक जज्बा जोश आ जाता है। हम लोगों को तो आता है, आप लोगों को भी आता है?
1: एब्सोल्युटली।
0: आकाशवाणी के साथ आपका कैसा लगाव रहा है?
1: पर्सनली मेरा फेवरेट

0: Rainbow, because it gives me a lot of retro music also. It gives me all sorts of music. So I like it. It's my favorite.
1: FM Gold bhi hai jisme
0: FM Gold hai. So I like it.
1: तो आपने कब वास्ता कब पढ़ा आपका रेडियो से?
0: देखिए रेडियो तो ever since we were commissioned, हमारे पास तब ट्रांजिस्टर होता था, एक छोटा सा FM तो नहीं था, तब ऑल इंडिया रेडियो चलता था, चाहे बॉर्डर पे हो कहीं भी हो. इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक ANPRC 25 रेडियो सेट होता था. हम लोग जब रास्टैग एक्साइज में थे और हम लोग ट्यूनिंग करते थे, कई बार हम पाकिस्तान बॉर्डर पे थे तो उनके गाने आ जाते थे उसमें.
1: अच्छा, उनके गाने उनके, हमारे भी जाते हैं सर,
0: हमारे भी जाते हैं जी. तो उसको लगा देते थे, शेव करते करते गाने सुन लेते थे
1: जी.
0: वो जमाना था. सो रेडियो हैज हैड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली.
1: ऑलराइट, तो कोई गीत अभी आप अगर बोलें, कौन सा गीत प्ले करें?
0: हाँ, एक तेरी मिट्टी, दिस इज रिक्वेस्ट फ्रॉम नीति भल्ला.
1: ओके, आप ही के बॉन्डेड जो ग्रुप है उन्हीं की एक सदस्य है.
0: हाँ, फ्रेंड्स हैं, में से बॉन्डेड तो नहीं है, बॉन्डेड तो एनडीए वाला ग्रुप है, ये लेडी है.
1: ऑलराइट, तो नीति जी आपकी फरमाइश पूरी हो रही है आकाशवाणी में.

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ में और T-72 टैंक के इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, टैंक रेजिमेंट के साथ रह चुके हैं. आपके पूरे इस करियर में विद द यूनिफॉर्म ऑन कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे सिविलियंस के साथ जो बड़ा यादगार है, एक्शन के दौरान या कुछ एडवेंचर?
1: पर्सनली मैं डिसिप्लिन के बारे में बता देता हूं आपको. जब मैं यंग ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था तो मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर था रेजिमेंट का. और मेरे
0: ज्यादातर लोग कहते हैं आप जानबूझ के लाते हो, बट इट्स वंडरफुल टू हियर. प्लीज गो
1: अहेड. एक एडजुटेंट होता है हमारे, टोनी बेन्स, ही इज इन द यूएस नाउ. आई डोंट नो इफ ही इज लिसनिंग दिस, बट मैं नया नया था, मेरी 2 महीने की सर्विस थी.
0: ओके.
1: तो उन्होंने बोला शो मी द फुटबॉल शूज, डिस्प्ले करो कैसे हैं. तो मैंने शूज निकाले, डिस्प्ले कराए सारे रेजिमेंट के. तो एक शू में लेसेस नहीं थे, तो उसने उसकी वजह से मुझे गार्ड ड्यूटी, एक राउंड द क्लॉक गार्ड ड्यूटी की पनिशमेंट दी थी. उसमें क्या होता है कि यंग ऑफिसर को हर 1 घंटे बाद गार्ड रूम, एक जो हमारा होता है जहाँ पे हमारा एम्यूनिशन रखा होता है, वहाँ जाके साइन करना पड़ता है एवरी 1 आवर, स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट 9 PM टू मॉर्निंग 6 AM, सो दैट यू डोंट स्लीप.
0: अच्छा.
1: सो दैट इज अ पनिशमेंट फॉर द यंग ऑफिसर इफ यू मेक ए मिस्टेक.
0: ओके.
1: सो माई मिस्टेक वॉज दैट आई did not ensure that there were laces in the football shoes
0: ever.
1: So that I used to always remember. And
0: but it groomed you into a good individual.
1: Yes, exactly. NDA mein also aapko main ek cheez bataunga ki agar aapke paas table manners nahi hai, they teach you other than they teach you things like table manners, courtesy, opening the door for the lady, table ke upar aap एल्बो रख के नहीं खा सकते. अगर आपके सीनियर ने आपको देख लिया
0: जी,
1: तो वो आपका पूरा नमक आपके अंडे में डाल देगा.
0: वो बोलेगा खाओ,
1: पूरा आप खाओ, या पूरा का पूरा आपको बोलेगा टेबल के नीचे जाओ. और वो सारे वहां से जो गलती कर देते थे नीचे से उसको बम्प्स पिक किक करते थे. तो ये चीजें आपको याद रहती है लाइफ पर, यू नो. कि
0: बट आपको प्रॉब्लम नहीं होती ये सब डिसिप्लिन लेके जब आप सिविलियन सोसाइटी में आप जाते हैं?
1: काफी फौजियों को होती है, बट एडजस्ट करना पड़ता है. बट इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट. इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट.
0: तो गुस्सा कैसे जबाते हैं फिर आप?
1: अंदर अंदर हम बोलते हैं दीज ब्लडी सिविलियंस. जोकिंग करते हैं, दिस इज ऑल जोक्स. बट यू नो, अगर कोई मैनर्स वूनर्स का अगर हमारे जैसे होता है तो हम अपने मन में ही करते हैं.
0: आप जब आपने अपनी सर्विस पूरी कर ली उसके बाद एडवेंचर में आप चले गए? बिल्कुल. नेचर से बहुत प्यार करते हैं.
1: चला गया था
0: जी.
1: एंड माय कंपनी वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग बंजी जंपिंग इनटू इंडिया. वी वर द सेकंड कंपनी टू ब्रिंग हॉट एयर बलूनिंग इनटू इंडिया. एंड वी टू सेट अप एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर ट्रैक्स, माउंटेनियरिंग एंड स्टफ लाइक दैट, व्हिच वी स्टिल डू. कंपनी, आई डोंट नो वेदर आई कैन टेक द नेम ऑफ द कंपनी, वंडरलस्ट, एंड इट्स अ वेल नोन कंपनी नाउ.
0: तो आप एडवेंचर में, मतलब आपका शुरू से ही शौक था?
1: हाँ, ऑलवेज, राइट फ्रॉम द आर्मी डेज.
0: जब तक पैशन नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते ना काम.
1: आर्मी डेज से. एंड इवन नाउ टुडे आई एम अ ट्रैकर, आई ट्रैक अ लॉट. वी आर गोइंग फॉर अ हरकी डून ट्रैक नेक्स्ट मंथ नाउ, एंड वी डिड द ग्रेट लेक्स ट्रैक.
0: और कोई सिविलियन आपके साथ जुड़ना चाहे जो डिसिप्लिन्ड है वो जुड़ सकता है?
1: नहीं नहीं, सिविलियंस आर आल्सो डिसिप्लिन्ड, दे आर गुड लॉट, एंड आई हैव लॉट ऑफ सिविलियन फ्रेंड्स, एंड वी ऑल गो टुगेदर इन माय ट्रैकिंग ग्रुप या अदर ग्रुप्स.
0: कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ये बताइए कि आज के टाइम पे जो युवाओं को आप देखते हैं, है ना, लेट्स गेट टू दिस पॉइंट स्ट्रेट, जब आप इनको देखते हैं तो आप 15 साल की उम्र में एनडीए गए, आप एक डिसिप्लिन्ड बॉय बन गए या बना दिए गए, उसके बाद एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपकी चली आगे. आपको लगता है कि अब जो मॉडर्न सोसाइटी के जो युवा हैं जो आपको सुन रहे हैं, कुछ शायद चाहेंगे कि फौज में आए, कुछ नहीं आ पा रहे होंगे, तो फौजी जैसी जिंदगी वो डिसिप्लिन्ड लाइफ कैसे जिए?
1: देखिए, मेरा कहना है, एंड दिस इज पर्सनल ओपिनियन, दैट एवरीबडी शुड स्पेंड सम टाइम इफ दे कैन इन द आर्मी फॉर, इवन इफ इट इज फॉर 5 years, लाइक द शॉर्ट सर्विस कमीशन. ये जो बेस बनता है ना, जो शुरू का, एंड वो जो डिसिप्लिन्ड जो बेस होता है, आप वो बेस 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में नहीं बना सकते.
0: ग्रेट पॉइंट.
1: यू हैव टू कैट देम यंग. एंड ये अगर हम बेस दे दें अपने यूथ को कि आपको पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं कि कंपलसरी आपको 5 years या 3 years की आर्मी ट्रेनिंग करनी है, देर विल बी ए होल लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट डिसिप्लिन.
0: यस,
1: टेल्स ऑफ पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, सो थिंग्स लाइक दैट विच द आर्मी टीचेज यू. एंड आई होप समडे दिस हैपेंस.
0: राइट. आपको प्यार व्यार नहीं हुआ कभी सर? आप बहुत सीरियस सीरियस बातें करो. टैंक की बात कर दी मैंने, फायर कर दिया हेलीकॉप्टर से, जनरल उतरे, उन्होंने बोला टैंक को इधर करो कुछ.
1: आप जब यंग ऑफिसर होते थे नाभा में, एक छोटा सा स्टेशन है पंजाब में.
0: अच्छा.
1: मुझे मालूम है कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर, नाम नहीं लूंगा, कोई भी सीओ की डॉटर्स होती थी, उनको इम्प्रेस करने के लिए हम लोग टेनिस बैडमिंटन खेलते थे,
0: जोर जोर से शॉट मारते थे.
1: कभी कभी कुछ लेटर्स एक्सचेंज होते थे तो अच्छा. टेनिस कोर्ट के पास कहीं एक लेटर चला जाता था, वहां से दूसरे दिन लेटर आता था, तो बस वही होता था. दैट इज द टाइप ऑफ रोमांस वी डिड इन दोस डेज.
0: अच्छा. एक रोमांटिक गाना चला देता हूँ सर, आप ही की प्लेलिस्ट से लिया हुआ है कुछ. इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किसकी फरमाइश चाहिए? बताते हैं सर, ये गाना सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं जल्दी.

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं। मेरा नाम है मुनीश जौली और हमारे साथ मेजर एस के यादव मौजूद हैं। तो यादव साहब, अच्छा किया आपने थोड़ा बहुत बता दिया कि रोमांस है आपके दिल में और चिट्ठियां आप लिखते थे, तो फौजी की चिट्ठी भी वही होती है कि बम धड़ाके वाली या कुछ रोमांटिक बातें होती हैं उसमें?
1: फौजी भी आप जैसे ही हैं, हम और आप, और हमें भी वही फीलिंग है जो आप में है और वही जज्बा है, तो एब्सोल्युटली देयर इज नो डिफरेंस।
0: दिल्ली में अभी ये मौसम चल रहा है कि बोगनविलिया बहुत देखने को मिलता है, और उससे जुड़ी कोई खास बात आपसे जुड़ी हुई है?
1: बोगनविला मेरा एक पैशन था, एक माउंटेन्स भीमताल के पास एक मैंने फ्रूट ऑर्चर्ड बनाया है।
0: ओह वंडरफुल।
1: और उसमें करीब 500 फ्रूट ट्रीज लगाए हैं।
0: ओह।
1: एंड आई कॉल इट बोगनविला माउंटेन रिट्रीट। और 5 कॉटेजेस बनाई है, जो द गुड थिंग अबाउट दैट इज कि उसमें कोई आरसीसी फुटप्रिंट नहीं है।
0: ओके।
1: खाली पाइन वुड, ग्लास और लोकल स्टोन का है।
0: अच्छा।
1: और उसमें खाली नेचर है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, पहाड़ है। That is it.
0: आप बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है वहीं पहुंच गए।
1: मैं वहीं पहुंच जाता हूं ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड।
0: वहीं पहुंच जाता हूं। आप डॉग लवर भी हैं सर?
1: यस।
0: आपने बातों बातों में हमें बताया और मैं भी डॉग लवर हूं। एंड अभी लगभग 2 दिन पहले दिल्ली कैंट एरिया में जो कैंट बोर्ड है उसके जरिए एक वेट हॉस्पिटल भी खोला गया और न्यू दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने उसका उद्घाटन किया, सुन के अच्छा लगा। तो ये
1: मेरे पास, मुझे याद नहीं है मेरी इंटायर लाइफ में एक्चुअली मेरी फैमिली में एक डॉग ना हो।
0: अच्छा।
1: एवर।
0: ओके।
1: माय फादर वाज अ डॉग लवर एंड आई हैव हैड लैब्राडोर्स। अब मेरे पास एक गोल्डन रिट्रीवर है, शिफू है उसका नाम। और अभी एक मेरे दोस्त ने मुझे एक पहाड़ी शीप डॉग जो उसको रोड साइड पर मिला था उसको उसने रेस्क्यू किया।
0: ओके।
1: एंड थैंक यू विवेक, अगर आप सुन रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया कि अगर आप इसको रखना चाहें तो हम
0: विवेक
1: उसका नाम रखा है और उसको हमने अभी 5-6 महीने का है एंड इज ए शीप डॉग और बहुत मजा आता है।
0: मेरे पास फोन आते हैं आईपीएल के मैचेस आ रहे हैं, पासेस मिलेंगे, पासेस मिलेंगे। विवेक ने अगर डॉग की जान बचाई तो एक पास उसको दूंगा आईपीएल का। मैं नहीं सर, मैं देखे रहूंगा।
1: ओ वैसे विवेक, यू अर्न्ड अ पास आईपीएल पास इफ यू लिसनिंग।
0: टॉप टियर होगा,
1: लैंडोर में रहते हैं मसूरी के पास।
0: ओ, फिर तो बच गए। एनीवे सर, यू जस्ट मेंशन अबाउट योर डैड। आई थिंक हमारे प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता कि आपके एक तरीके से आइडल, आपके इंस्पिरेशन, आपके फादर, फॉर्मर एयरफोर्स पायलट, हंटर, जहाज उड़ाते थे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, जो फाइटर पायलट, यू नो, बिलोंग्स टू माय कम्युनिटी। टेल अस समथिंग अबाउट हिम सर।
1: माय डैड केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा
0: जी,
1: एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज।
0: वाओ।
1: एंड देन जॉइन्ड द एयरफोर्स।
0: हरियाणा में कहाँ से सर?
1: एक गांव है रेवाड़ी के पास कॉल्ड दखोरा, इट्स नियर कोसली, अगर आपने सुना रेवाड़ी। रेवाड़ी तो सुना,
0: वहां से और भी फाइटर पायलट्स आए।
1: कोसली इज अ विलेज बाय द वे इन हरियाणा जहां पे सारे ऑफिसर्स, यहां देयर इज अ ऑफिसर्स मेस इन दैट विलेज।
0: वाओ।
1: तो
0: स्क्वाड्रन लीडर मनीष यादव
1: काफी हैं, एयरफोर्स के भी हैं।
0: ओके।
1: सो दैट इज हाउ दैट इज हिज रूट्स एंड देन ही ग्रू अप
0: इन। एंड वाज ही पार्ट ऑफ द वॉर? Hunter would have
1: yes, he was.

0: seen the 71 war, he's seen the 65 war, yes.
1: Okay. और क्या खास बात थी जो आप उनको, हमारे डैड हीरोज तो होते हैं लेकिन सबके डैड के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, तो आपको क्या लगता था उनके अंदर?
0: सुबह सुबह जब वो यूनिफॉर्म पहनते थे मैं देखता था छोटा बच्चा, और मैंने कहा यार मैं कब बड़ा होऊंगा और ये यूनिफॉर्म पहनूंगा, और ऊपर हवाई जहाज उड़ते थे देखते थे हम लोग. एंड मेरे फादर भी टॉल थे, नाइस, एंड फॉलोड हिज फुटस्टेप्स.
1: पर आपने भी फ्लाइंग सीखी है?
0: हाँ.
1: And you are a qualified pilot?
0: Yes, I've got a CPL.
1: All right. So how come Air Force ko chhod kar,
0: yes,
1: not chod, that tank mein nahi jana chahiye tha, lekin ladaku tank, ladaku viman.
0: After I left the army, I went away to UK.
1: Okay.
0: And Kent se maine apna flying license liya tha.
1: Wow. Right sir, samay ijazat nahi de raha ki hum aage aur badhe. आपके जो बॉन्डेड ग्रुप है वहां से कोई और फरमाइश तो नहीं आई सर गाने की? अगर आई है तो हम जाने से पहले उसे प्ले करेंगे सर.
0: काफी है, लेकिन आप अगर एक ये कर दो अभी ना जाओ छोड़ करके.
1: हाँ हाँ हाँ, ये दिल अभी भरा नहीं सर, ये तो हमें कहना चाहिए आपके लिए कि अभी ना जाओ छोड़कर. मोहम्मद रफी साहब की आवाज में एक गीत है, तो इसको मैं चलाता हूँ ढूंढ के सर.

0: राइट देन सर, इट वॉज अ शेयर प्लेजर आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. एंड ये गीत तो मैं चला रहा हूँ, बट वी मीन इट एवरी लिरिक ऑफ दिस गोल्डन सॉन्ग. कुछ चलते चलते हमारे युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
1: थैंक यू सो मच गाइज. प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, प्ले लॉट ऑफ वेदर इज टेनिस, स्विमिंग, आउटडोर्स, एंड सी लेस ऑफ स्क्रीन टाइम.
0: वो बहुत जरूरी है सर. But it was a sheer pleasure hosting you, sir. And you please look after yourself, and thank you so much.
1: Thank you.

0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा, उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इस दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अधिक रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
1: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
2: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
0: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
3: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
3: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया ये सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है

0: एक रिपोर्ट।
1: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रह सकते है। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्रिकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। एक रिपोर्ट।
2: दिन की शुरुआत टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर की बैठक से हुई। बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया। सिंगो तैयान और सीटीआर निर्मल कुमार जैसे टीवी के नेताओं ने सीपीआई और सीपीआईएम के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा। इस बीच एआईएडीएमके भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी के महासचिव एडप्पाडी पलानी सामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: थीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरलम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Nation salutes bravery and sacrifice of armed forces on first anniversary of Operation Sindoor. President, Vice President and Prime Minister call it a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism. West Bengal Governor dissolves assembly. Political parties on to form governments in Tamil Nadu and Kerala. Railways to move to upgraded passenger reservation system from August, replacing the 40-year-old system. Minister Ashwini Vaishnaw directs officials to ensure smooth transition. President of Vietnam Tho Lam emphasizes

वो रुला के हंस ना पाया देर तक, वो रुला के हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। भूलना चाहा कभी उसे उसको, भूलना चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक, वो रुला के हंस न पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी इंदु पांडे। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री जॉर्ज ने भारत और नॉर्वे के बीच मजबूत और बहुआयामी साझेदारी पर बल दिया। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल R.N. रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिनभर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने वर्ष 2026 में पराली जलाने की घटनाओं को खत्म करने की तैयारी की समीक्षा बैठक की। इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 से होगी। ये दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न होगी। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. The nation yesterday saluted the courage, commitment and supreme sacrifice of the armed forces on the first anniversary of Operation Sindoor. On this day last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year.

0: अजियो
1: अजियो, हमने तो पहचान लिया आपको। अब के सफर में दर्द के पहलू अजीब हैं। ध्यान से सुनिएगा कि अब के सफर में दर्द के पहलू अजीब हैं। जो लोग हम ख्याल न थे हम सफर हुए। एक बार फिर से आपका स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। ये है हमराही, हम और आप एक राह।

अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि हम कहें नहीं और आपने सुन लिया, तो आप क्या कहेंगे? हर एक बात के यूं तो दिए जवाब बहुत सारे, जो खास बात थी हर बार हंस के टाल दिया। ऐसा ही कुछ होगा ना। अगर मान लीजिए कि कोई तारीफ करने पर आ ही जाए, तब क्या होगा? सोच के बताइए।

और तारीफ से जो शुरुआत शुरू होती है वो कहाँ तक जाती है इसका पता तो नहीं चलता, लेकिन हाँ ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। ये और बात है कि कई बार हमें साथ चलते हुए एक राह पे जिसे हम और तुम जब मिले तो हमराही बने, तो शहर दर शहर फिरते रहे, रास्ते घर नहीं जाने देते, आगे दुनिया नहीं जाने देती, पीछे बहुत सारे मंजर हैं वो नहीं आने देते। शाम आती है मगर हम घर से निकलना ही नहीं चाहते, कई बार उलट देते हैं पैमाने दिल के, न जाने क्यों उसे भर के हम फिर से नहीं जाने देते। देखिए जनाब, ये जो समय है ना, ये ऐसा समय है जिसमें बहुत सारी चीज़ें उलट उलट के हमारे पास आती हैं, जिन्हें हम रात की साई में ही पहचानना या फिर याद करना मुनासिब समझते हैं, और उसके बाद लगता है कि हाँ कुछ तो है जो जादू की तरह लगता है हमारे आसपास।

मौसम अगर मन का अच्छा हो, बाहर का अच्छा हो, तो फिर ऐसे ही हालात होते हैं और हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। उसी में अगर रात का जिक्र हो तो फिर और भी बात बन जाती है। इसीलिए कहा गया है ना कि हमारे जो अंदर का मन है वो बाहर कई बार आने में संकोच करता है, और जब आता है तो फिर बात वहीं से शुरू होती है। लेकिन कई बार रात की जब बात आती है तो ख्वाब अपने आप चले आते हैं, और ख्वाब ऐसे कि टूटते ही नहीं। ख्वाब ताबीर में ढला ही नहीं, वो दरीचा अभी खुला ही नहीं। खाक पर रह गए हैं नक्शे कदम, और मुसाफिर का कुछ पता ही नहीं। तब आप क्या कहेंगे? यही कि हाँ, बहुत सारे वादे, बहुत सारी बातें हैं मेरे दिल में तुम्हारे लिए।

अच्छा सच सच बताइए कि मोहब्बत में जब हम होते हैं तो क्या बार बार हमें मोहब्बत है बोलने की ज़रूरत पड़ती है? दोनों जवाब हो सकते हैं, कोई कह सकता है कि हाँ और कोई कह सकता है कि हाँ नहीं भी, लेकिन हमें यकीन नहीं है कई बार अपनी रंगत पे, और कई बार कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनको हम मायने तो जानते हैं लेकिन न जाने क्यों बार बार उनको सुनने का मन करता है। ऐसा आपके साथ कभी हुआ, कभी आपने फील किया इस बात को?

0: मुझे देख कर आपका
1: न जाने क्यों मोहब्बत में कहां से ये चांद तारे शामिल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कभी देखा है किसी ने जिक्र किया हो सूरज का? नहीं ना। लेकिन कुछ तो ऐसी चीज है इन चांद सितारों में, ऐसी शीतलता है, ठंडक है कि जब भी मोहब्बत की बात होगी तो इनका जिक्र अपने आप आ जाएगा। तुम मिले जो मुझे जिंदगी तो ऐसा लगा कि झूमने गाने लगे और गुनगुनाने लगे और फिर अर्थ जीने के हमें मिल गए। पर कई बार ये भी हम कह सकते हैं कि वो खुशी होती है, उसको लगता है कि हाँ ये बहुत दिनों तक रहे तभी अच्छा है। एक हल्का सा फिक्र होने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी गायब हो जाएगी या ये भी चली जाएगी, और इसी उधेड़ बुन में हम सब लगे रहते हैं और शायद इसी का नाम मोहब्बत है।

शुक्रिया। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:38 और आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे हम राही हैं आपके साथ। ये है हम राही मतलब राहें हमारी एक हैं और हम और तुम जब मिले तो फिर रास्ते भी शायद एक ही हो जाएंगे और जब कोई मिल जाए तो फिर वो रास्ता कितना ही सुनसान क्यों ना हो बड़े आराम से कट जाता है। वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हुआ सफ़र। और सही मायनों में देखा जाए तो जो रास्ते होते हैं, जो हम सफ़र हम साथ चल रहे होते हैं हमराही, वही मेन होता है मंजिल का। मतलब मंजिल पे जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे कहानी हो सकता है कि शायद दूसरे मोड़ पे आ जाए

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

सपनों वाली रात लिए। अगर रात है और सपने ना हो तब हर एक सांस मुझे खींचती है उस तरफ। ये कौन मेरे लिए बेकरार रहता है, क्या कभी ये ख्याल भी आता है? क्योंकि कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हाँ, जो इंतज़ार है कोई जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, या सिर्फ ये हसीन ख्याल है।

कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। इस इंतजार में बैठे हैं हम उनकी महफिल में कि वो निगाह उठाएं तो हम सलाम करें। इसीलिए कहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस जो बात आंखों आंखों में इशारों में हो जाए उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि ज़बान ने कुछ कहा नहीं और समझ में सब कुछ आ गया।

अब इसी बात पे अगर हम ये कहें कि बात हक है तो फिर कबूल करो, ये ना देखो कि कौन कहता है। चले थे जिस तरफ वो निशान खत्म हुआ, सफर अधूरा रहा, आसमान खत्म हुआ, लेकिन वो वादे, वो बातें, वो सारी की सारी चीज़ें हमने कहीं न कहीं अपने पास गांठ बांध के रख ली हैं। वो इसलिए कि जब हम चाहें उस पोटली को खोलेंगे और खोलने के बाद उसमें से एक एक लफ्ज़ निकाल के और उसको याद करेंगे। फिर यूँ ना कहना कि हम सिर्फ और सिर्फ रात के हम सफ़र थे, क्योंकि उसके बाद भी बड़ी सारी उम्मीदें, बड़ी सारी चीज़ें हमारे साथ साथ चलीं। हम राही है ये आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

प्यार से बात शुरू हुई और प्यार पे बात खत्म हो गई। लो, बातों बातों में, प्यारी प्यारी बातों में वक्त भी पता नहीं कैसे चला गया। 4 बजने को है और अब समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की

0: तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आर एन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वैत्री कड़गम यानी टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 से होगी। यह दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक RBI बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न होगी। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशक जोखिम कम करने वाले प्लेटफॉर्म IRRA का उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। सेबी ने कल जारी बयान में बताया कि शेयर बाजारों की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म की संरचनात्मक रूप से आवश्यकता नहीं रह गई थी। ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इंग्लैंड में 136 परिषदों की करीब 5000 सीटों और 6 मेयर पदों के लिए वोट डाले गए। ये 2024 के आम चुनाव के बाद से सबसे बड़ा चुनावी आयोजन है। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बारिश से बाधित मुकाबले में 213 रनों के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। आज नई दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ajay Kumar. The nation yesterday saluted the courage, commitment and the supreme sacrifice of the armed forces on the first anniversary of Operation Sindoor. On this day last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pehelgam on the 22nd of April last year. In their messages on the occasion, the President, Vice President and Prime Minister described Operation Sindoor as a landmark expression of country's uncompromising stand against terrorism and threats to national security. President Draupadi Murmu called Operation Sindoor as a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. President Murmu said the nation salutes the indomitable bravery, sacrifice and professionalism of our soldiers. Vice President C.P. Radhakrishnan termed Operation Sindoor as a defining moment when India responded firmly to terror forces and terror-sponsoring states attempting to disturb the peace, unity and sovereignty of Bharat. In his message, Prime Minister Narendra Modi said the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. Mr. Modi said the Indian Armed Forces displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation. He said the forces gave a fitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. Mr. Modi also added that the entire nation salutes the armed forces for their valor. Defence Minister Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah and Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav also honoured the valor and sacrifice of the Indian Armed Forces on the anniversary of Operation Sindoor. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader in West Bengal will be elected. The governor of West Bengal, Arun Ravi, dissolved the Legislative Assembly of West Bengal yesterday. The new chief minister of the state and the Council of Ministers will be sworn in on Saturday, May 9th, the birth anniversary of Kavi Guru Rabindranath Tagore. In Keralam, the decision on the new chief minister will be announced by the Congress High Command in New Delhi after consulting reports submitted by AICC observers. KPCC President Sunny Joseph said a resolution empowering the AICC president to select the Congress Legislative Party leader was unanimously adopted at the Legislative Party meeting held in Thiruvananthapuram yesterday. KPCC President Sunny Joseph said the observers who will be returning to Delhi will submit their findings to the national leadership of the party. Communications Minister Jyotiraditya Scindia will be on a two-day official visit to Maharashtra from today. The visit will include key engagements relating to the Department of Posts as well as participation in prominent academic and public events in Mumbai and Pune. The Ministry of Communications informed that today Mr. Scindia will inaugurate the Andheri Railway Station sub-post office in Mumbai along with Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. The World Health Organization, WHO, yesterday confirmed 5 hantavirus cases linked to cruise ship outbreak, while 3 additional cases remain suspected. But while it was serious, the WHO said it assesses the public health risk as low. WHO has now informed the 12 countries whose nationals disembarked the cruise ship MV Honduras earlier during the voyage at the remote British territory of St. Helena in the South Atlantic Ocean. Those 12 countries are Canada, Denmark, Germany, the Netherlands, New Zealand, St. Kitts and Nevis, Singapore, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States of America. In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs in a rain-marred match at Atal Bihari Vajpayee Khana International Cricket Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 and stipulated 19 overs. Earlier put into bat, Lucknow Super Giants scored 209 for 3 in 19 overs. Multiple rain interruptions reduced the match to a 19-over side affair, settling Bengaluru a DLS target of 213. Today, Delhi Capitals will take on Kolkata Knight Riders at Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m. And with that, we end this news bulletin.

4:11 होने वाले हैं। ये है अरुणिमा। और जैसा कि समय और अरुणिमा दोनों ऐसा लगता है कि बस पौ फट गई और अंधेरा वापस चला।

अब इस बात पे अगर हम ये कह दें कि हम क्या क्या संभालें, क्योंकि कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को, खटक सी है जो सीने में गमे मंजिल न बन जाए। इसी बात पे तलत अजीज की ये बड़ी प्यारी सी गजल है, आप भी सुनिए, क्या पता आप ही के दिल का हाल हो ये।

न जाने कितनी बार शुक्रिया और मेहरबानी करते हुए हम सब अपनी अपनी यात्रा में बस चलते चले जा रहे हैं। यात्रा जो रोजमर्रा की जिंदगी से निकाले खुद के लिए कुछ सुकून के पल हैं, और हर इंसान अपनी जिंदगी में यात्रा तो करता ही है। आखिर किसका मन नहीं करता कि फिर से नई उमंग से जीने का, फिर कोई मन में ऐसी चाहत कि हम आकाश में उड़ें, या फिर किसी पंछी की तरह पे जी लगा के ऊपर और ऊपर उड़ते चले जाएं, है ना। मन भी तो उड़ान भरता है। कई बार मन ये भी कहता है कि सागर की गहराइयों में जाकर के मोती ढूंढ लाएं, कोई पहाड़ की चोटियों पे

को तलाशता है तो कोई जीवन के इस आपाधापी में पगडंडियों पे लड़खड़ाते गिरते फिर से संभलते हुए खुद को खोजता हुआ, आखिर हम सब यही तो चाहते हैं कि बस चलते रहें, चलते चले जाएं, है ना। और इसी बीच में ये एहसास भी होता है कि ये जो हमारी अपनी अपनी यात्राएं हैं इसमें हमें जब कोई मिलता है तो कभी हमराही बनता है, हम सफ़र बनता है, और कई बार यूँ भी एहसास होता है कि हाँ वो शायद रात से शुरू हुआ जो सफ़र था सुबह तक हमारे साथ चलेगा।

संवार लीजिए। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 4:25 और ठीक 42 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये है अरुणिमा। अरुणिमा जो हमें कहती है, और हम इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि रात को सोते समय दिमाग की जो उलझने थी, जिसने हमें जकड़ के रखा था, शायद सुबह होने तक वो सब उलझने खुद ब खुद सुलझ चुकी होती हैं। सोई रहने के दौरान मन न जाने कहां कहां भटका होगा, लेकिन एक अनजानी दुनिया में इधर से उधर, उधर से इधर होते हुए फिर से एक सुहानी सुबह पे खड़ा हो जाता है। ये और बात है, क्यों कुछ न कुछ सवाल

ख्याल तो बड़े सारे आते हैं, लेकिन कोई ख्याल जब मुकम्मल होता है तब जाके पता चलता है कि हाँ वो ख्याल जो था वो कितना हसीन था। और उसके बाद एक और ख्याल, फिर ऐसा लगता है कि हमें ना सोचने की, जो हमें अच्छा लगता है उसको सोचने की आदत पड़ जाती है। और जब भी समय रहता है खाली, तो कई बार हम सोचते हैं कि चलो हम वही वाला प्यार प्यार, वही वाला सच सच, या फिर वही वाली कहानी फिर से याद करें, कभी खुली आंखों से तो कभी बंद आंखों से।

कई सारी ऐसी धुनें होती हैं जो हमें याद रहती हैं और उन धुन को हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ गाते भी हैं। कई बार लफ्ज याद नहीं रहते, कई बार धुनें भी समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी सब कुछ इतना जाना पहचाना लगता है। यूँ लगता है कि ये तो कुछ ऐसी चीज़ है जो बरसों पहले हमारे पास थी, अब अचानक एक बार फिर से हमें याद आई है। 4:32 और ठीक 38 सेकंड हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। ये है अरुणिमा। और इसके अलावा जो चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगती है वो ये कि मन इतनी सारी चीज़ें ढूंढते ढूंढते और इतनी सारी चीज़ें अपने आप से कहते कहते न जाने क्या क्या चीज़ें और भी समेटता चला जाता है और उन गुत्थियों के लिए यही छोड़ता है कि चलो इसको अभी संभाल के रख लेते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे। अब आप इसको परेशानी कहिए या आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो है जो दिल के करीब है और उसको सुलझाने की हमारी कोशिश रहती है।

मुस्कुरा कर मिला करो हमसे। लेकिन ये भी सच है कि होता है असर बातों में, वो भी खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। ये तो बात आप मानते हैं, पर हर एक सांस मुझे खींचती है उस तरफ। कभी कभी क्या ये एहसास होता है कि कौन है बेकरार हमारे लिए? अगर ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज और साया बन के उभरती है, और वो ये कि कहीं ये सब चीजें झूठी तो नहीं, एक गलत फहमी तो नहीं, हमारा सिर्फ एक ख्वाब तो नहीं, सिर्फ एक बात तो नहीं। और जैसे ही सुबह होती है, हम उसको फिर से रख देते हैं। चलो आगे आने वाले टाइम में फिर बात करेंगे।

रात। कितनी दूरी है लेकिन फिर भी लगता है कि दोनों बहुत करीब हैं। दिन और रात दोनों में कितना अंतर है, लेकिन कुछ न कुछ दोनों का एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। और जब दोनों मिलते हैं तो शायद कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना, जैसे कि गुलाम अली साहब की गजल है,

चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन तुम अच्छे लगते हो। और अब बताओ कि तुम कैसे हो। ये ख्याल अपने आप में बड़ा शानदार है। फिलहाल तो बजने वाले हैं 5, समय हो रहा है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर मुंहतोड़ जवाब था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिमी सिबी जॉर्ज ने कल नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री जॉर्ज ने भारत और नॉर्वे के बीच सशक्त तथा बहुआयामी साझेदारी पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत के शून्य सहिष्णुता की नीति को दोहराया और आतंकवाद के खिलाफ नॉर्वे के सहयोग की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में स्थानीय तथा क्षेत्रीय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इंग्लैंड में 136 परिषदों की करीब 5000 सीटों और 6 मेयर पदों के लिए वोट डाले गए। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया है। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ajay Kumar. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The Governor of West Bengal, R.N. Ravi, dissolved the Legislative Assembly of West Bengal yesterday. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kabir Guru Rabindranath Tagore. In Keralam, the decision on the Chief Minister will be announced by the Congress High Command in New Delhi after consulting reports submitted by AICC observers. KPCC President Sunny Joseph said a resolution empowering the AICC President to select the Congress Legislative Party leader was unanimously adopted at the Legislative Party meeting held in Thiruvananthapuram yesterday. KPCC President Sunny Joseph said the observers who will return to Delhi will submit their findings to the national leadership of the party. In Assam, the BJP-led NDA government will take oath for a third consecutive term on the 12th of this month. A high-level preparatory meeting regarding the swearing-in ceremony was held in Guwahati yesterday in the presence of senior BJP leaders. Addressing a press conference after the meeting, state BJP President Dilip Saikia informed that the oath-taking ceremony will be held at the Veterinary College playground at Khanpada in Guwahati. He said Prime Minister Narendra Modi will attend the event as the chief guest. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a brainstorming session with officials of Department of Commerce and Department for Promotion of Industry and Internal Trade in New Delhi. In a social media post, Mr. Goyal said that discussions focused on boosting exports and investments, unlocking opportunities for aspiring exporters and tapping new global markets. Communications Minister Jyotiraditya Scindia will be on a two-day official visit to Maharashtra from today. The visit will include key engagements relating to the Department of Posts as well as participation in prominent academic and public events in Mumbai and Pune. The Ministry of Communications informed that today Mr. Scindia will inaugurate the Andheri Railway Station sub-post office in Mumbai along with Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. Secretary West in the External Affairs Ministry, C.B. George, represented India at the National Day reception of Norway. In a social media post, the External Affairs Ministry said the Secretary highlighted the multifaceted and vibrant partnership between India and Norway. The bilateral partnership is marked by robust high-level engagements encompassing diverse areas of trade and investment, blue economy, climate action, renewables, Arctic research, space and culture. Akashvani will organize a marathon in the national capital today to mark its 90th anniversary. The nearly 3.5-kilometer marathon will begin from Akashvani Bhavan and pass through Krishi Bhavan, Rail Bhavan and the RBI building before concluding at Akashvani Bhavan. Employees of Akashvani, Doordarshan and Prasar Bharati along with their family members will participate in the marathon. Saudi Arabia suspended U.S. military access to its bases and airspace, forcing President Donald Trump to abruptly abandon his plan to escort ships through the Strait of Hormuz, two U.S. officials have confirmed. The move marks a significant setback for Washington's Gulf strategy, with a key regional ally effectively blocking the operation known as Project Freedom before it could gain traction. Trump has shifted focus to diplomacy, describing recent talks with Iran as very good and saying a permanent deal is very possible. In United Kingdom, polling concluded in crucial local and regional elections across England, Scotland and Wales. In England, voters have cast ballots for about 5,000 seats across 136 councils as well as six mayoral contests. It is the biggest electoral exercise since the 2024 general election. In Scotland and Wales, people have decided new parliamentary leadership. However, there are no elections in Northern Ireland until May 2027. The World Health Organization, WHO, confirmed 5 hantavirus cases linked to cruise ship outbreak, while 3 additional cases remain suspected. But while it was serious, the WHO said it assesses the public health risk as low. WHO has now confirmed the 12 countries whose nationals disembarked the cruise ship MV Hondas earlier during the voyage at the remote British territory of St. Helena in the South Atlantic Ocean. In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs in a rain-marred match in Lucknow last night. Chasing 213 for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in stipulated 19 overs, and that is the end of this news bulletin.

भोर सुहानी 5:11 और ठीक 34 सेकंड हो गए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। और भोर हमेशा सुहानी ही होती है, कभी गौर कीजिएगा रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह इतनी रौनकें लेके आती है कि अपने आप से ही लगता है कि शायद पूरी चारों तरफ जो प्रकृति है वहाँ से दुआएं निकल रही है।

मरम्मत मुकद्दर की कर दो। उफ, कुछ लाइनें इतनी अच्छी होती है ना कि लगता है कि उस लाइनों में इबादत है, और उन लाइनों को पढ़ने के बाद ही यूं एहसास होता है कि जो शायद हमने दुआ मांगी थी वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि कई बार हमारे पास हम जो चाहते हैं उसके लिए अल्फाज नहीं होते, और जब वो अल्फाज मिल जाते हैं तब लगता है कि हाँ यही वो वाली बात है। भोर सुहानी है ये,

और इन मधुभरी हवाओं को महसूस करने के लिए सुबह उठना पड़ता है, जी हाँ, और तब जाकर के आपको वो फ्रेशनेस नजर आएगी और एक उत्साह समझ में आएगा कि हाँ आखिर सुबह उठने के लिए इतना जोर क्यों हमेशा से दिया जा रहा है। कुछ तो बात होगी इसमें।

ढूंढिए ढूंढिए, ढूंढने से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं मिलती, मिलती है ना। और अगर आशा और विश्वास की बात की जाए तो असल में वो तो मृग तृष्णा है एक तरह से। मतलब हम जितना ढूंढेंगे उतना आगे चले जाएगा, भागते जाएगा, या यूं कहें कि एक मणि है जो हमारे अंदर छुपी हुई है और उसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है। ध्यान से एक लंबी सांस लेते हुए आराम से बैठिए। सुबह सुबह की जो हवा है, सुबह का जो सूरज है, उसको देखिए। प्रकृति के साथ जितना हो सके उतना तारतम्य बिठा के उससे बात करने की कोशिश कीजिए, तो आशा और विश्वास दोनों आपके आजू बाजू होंगे और आप महसूस करेंगे इस बात को कि हाँ, ये बात कितनी अच्छी है। भोर सुहानी है ये आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।